0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online, and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 11 जून 2026 की एक ढलती हुई शाम और आप सभी को वैशाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज का SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों, कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक नमन करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की. भाई, आप क्या फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं? क्या फुटबॉल आपको पसंद है? मुझे जरूर बताइए. और अगर पसंद है तो आप कौन सी टीम का समर्थन कर रहे हैं इस साल फीफा वर्ल्ड कप के लिए? 04397997667 हमारा नंबर है. कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत करूंगी आज के संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद बात करेंगे आज से शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की. फिर मुलाकात करेंगे मेडल ऑफ ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया प्राप्तकर्ता डॉक्टर दिलीप कुमार गहनकारी से, जिसके बाद SBS फ्लैशबैक में चर्चा होगी बैंक खाता खोलने पर. और अंत में आपके लिए लेकर के आएंगे गीतों की एक रेलगाड़ी भी. तो दोस्तों, आज मुझे आपसे बस इतना जानना है कि भाई फीफा वर्ल्ड कप में आप किस टीम का समर्थन कर रहे हैं और क्या फुटबॉल देखना आपको पसंद है भी या नहीं. 04397997667 हमारा नंबर है. जरूर भेजिए मुझे अपने संदेश. और जब तक आप मुझे भेज रहे संदेश, आइए लिए चलती हूँ आपको संक्षिप्त समाचार की ओर. पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ. साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी यानी मनोसामाजिक विकलांगता से जुड़े लोगों को सेवाएं देने वाली एक संस्था का कहना है कि NDIS में बदलाव के लिए फेडरल सरकार द्वारा लाया गया मौजूदा विधेयक उनके कई ग्राहकों के जीवन को जोखिम में डाल सकता है. सीनेट समिति की जांच के दौरान संस्था माइंड ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता यानी फंक्शनल कैपेसिटी का आकलन करने के लिए प्रस्तावित मानदंड गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को योजना से बाहर कर सकता है. संस्था ने मांग की है कि विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले प्रत्यक्ष अनुभव रखने वाले लोगों और विशेषज्ञ सेवा प्रदाताओं से व्यापक परामर्श किया जाए. माइंड ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड निदेशक टिम हेफनन का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का स्वयं अनुभव रखने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें विधेयक के मौजूदा मसौदे को लेकर गंभीर चिंताएं हैं. वहीं दूसरी ओर पूर्व लेबर सरकार के विदेश मंत्री रह चुके गैरेथ इवांस ने ऑकस समझौते पर चल रही एक जांच में कहा कि इस समझौते से जुड़े कई ऐसे जोखिम हैं जिनका असर ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति पर पड़ सकता है. जनता के सहयोग से आयोजित इस स्वतंत्र जांच ने आज 11 जून मेलबर्न में अपनी पहली सार्वजनिक सुनवाई की है. इसी दौरान विदेश मंत्री पेनी वोंग और रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स लंदन में अपने ब्रिटिश समकक्षों के साथ ऑकस और अन्य मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं. गैरेथ इवांस का कहना है कि उनकी राय में इस समझौते से मिलने वाले संभावित लाभों की तुलना में इसकी लागत का जोखिम कहीं अधिक है. वहीं वन नेशन पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस सप्ताह चलाए गए ऑनलाइन फंड रेजिंग अभियान के तहत मिली दान राशि की पार्टी एक स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी. प्रवक्ता के अनुसार दान की रकम को लेकर पारदर्शिता की कमी संबंधित आलोचनाओं के जवाब में इस ऑडिट के निष्कर्ष किसी न किसी रूप में सार्वजनिक किए जाएंगे. पार्टी का दावा है कि उसे केवल एक दिन में ही $15 लाख का दान प्राप्त हुआ है, जबकि वन नेशन की वेबसाइट के अनुसार अब तक उसके अभियान के लिए लगभग $19 लाख जुटाए जा चुके हैं. प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी सहित लेबर और लिबरल दोनों दलों के कई सांसदों ने इन दान राशियों के दावों की सत्यता पर सवाल उठाए हैं. और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार. प्रवासन अधिकारों के समर्थक और सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि फीफा के मियामी मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए हैं. उनका कहना है कि हाल के इमिग्रेशन एनफोर्समेंट कदमों का असर उन अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों पर पड़ सकता है जो 2026 फीफा विश्व कप के लिए अमेरिका आने की योजना बना रहे हैं. समर्थकों ने सोमालिया के रेफरी उमर आर्टन को मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कथित रूप से प्रवेश से वंचित किए जाने की घटना का हवाला देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बाधाएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं. अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी की सदस्य यारेलेज मेंडेज ज़मोरा का कहना है कि उन्हें चिंता है कि टूर्नामेंट से जुड़े खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों को हिरासत में लिए जाने, प्रवेश से इनकार किए जाने या नस्लीय प्रोफाइलिंग का सामना करने जैसे खतरों की संभावना बनी हुई है. अब अंत में खबरें भारत से। भारत में ओमान के तट के पास एक कमर्शियल ऑयल टैंकर पर हुए हमले के बाद 3 भारतीय नागरिक अब तक लापता हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार 24 भारतीय क्रू सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 की तलाश जारी है। भारत ने घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में शिपिंग पर बढ़ते हमले चिंता का विषय है और सभी पक्षों से तनाव कम कर कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की है। ओमान में भारतीय दूतावास बचाव अभियान पर लगातार नजर रखे हुए है और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। भारत ने नागरिक जहाजों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने पर भी चिंता जताई है। इसी के साथ 11 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों, संक्षिप्त समाचार के बाद चर्चा फीफा वर्ल्ड कप की। भाई, आज 2026 फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एस्टेगा स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे देखने के लिए विश्व भर से फैंस नजरें टिकाए बैठे हैं। हालांकि खेल के उत्साह के बीच फीफा अध्यक्ष पर वीजा संबंधी मुद्दों को लेकर विवाद, सुरक्षा प्रबंधनों पर सवाल और आसमान छूती टिकट की कीमतों पर फैंस की मायूसी नजर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं भव्या पांडे के साथ।
3: नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और इस अंश में मैं आपको बताऊंगी कि मेक्सिको में वर्ल्ड कप का आगाज किस तरह से हो रहा है, टिकट कीमतें इस बार किस तरह से तय की जाएंगी और इन सभी विवादों के बीच फैंस का उत्साह किस तरह से बना हुआ है। 2026 फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत शुक्रवार को हो रही है और पहला मैच मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एस्टेका स्टेडियम में खेला जाएगा। फीफा अध्यक्ष पर वीजा संबंधी मुद्दों को लेकर उठे विवादों के बीच उन्होंने टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों और रेफरी को हुई परेशानियों के प्रबंध का बचाव किया है। तीनों मेजबानों देशों में मेक्सिको सबसे अधिक फुटबॉल लवर्स कंट्री माना जाता है, लेकिन यहाँ टिकट कीमतों और सुरक्षा को लेकर भी विवाद सामने आए हैं। तीनों मेजबान देशों में केवल एक ही देश है जहाँ फुटबॉल को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जीवन शैली की तरह जिया जाता है। मेक्सिको सिटी के एक कामकाजी इलाके में जूनियर क्लब में युवा खिलाड़ी अपने पसंदीदा राष्ट्रीय सितारों की तरह बनने की कोशिश में हैं, लेकिन वे उन्हें मैदान पर खेलते हुए देखने का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। वैनेसा डोमिंग्यूस कहती हैं कि उनका बेटा अपने आदर्श खिलाड़ियों को लाइव देखना चाहता है।
4: For them, it could be a wonderful experience, even better, because it's happening in their country. Imagine that. It could be wonderful. But the prices are excessive, so unfortunately, it is sad. Very sad.
5: Muy triste.
3: जब 1986 में पिछली बार वर्ल्ड कप मेक्सिको में हुआ था, तब स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस टूर्नामेंट में फुटबॉल इतिहास का सबसे चर्चित पल मैराडोना का हैंड ऑफ गॉड गोल भी देखने को मिला था। आइए आपको मिलवाते हैं फ्रांसिस्को ओरवानोस से। आपको बता दूं कि फ्रांसिस्को उस मैच के गवाह थे जिन्होंने इसे देखने के लिए अपना काम तक छोड़ दिया था।
6: मैराडोना वाज इनक्रेडिबल, वाज इनक्रेडिबल एंड आई कैन हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब इन दैट मोमेंट व्हेन अर्जेंटीना विंस दैट मैच।
3: लेकिन इस बार वे टिकटों की ऊंची कीमतों के कारण मैच लाइव नहीं देख पा रहे हैं।
6: And I can go because the tickets was very very expensive. I think that FIFA is going to kill the football, the worldwide football.
3: फाइनल बैलेट में ओपनिंग मैच की एक सीट की कीमत लगभग 1800 से 2500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक बताई जा रही है। ग्रुप स्टेज के औसत टिकट एस्टेक स्टेडियम में सबसे महंगे हैं। ऐसे में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने प्राइसिंग स्ट्रेटजी का बचाव किया है।
7: If you sell it at a lower price point in this particular market, it would have gone, which is perfectly legal in this country, in secondary markets at much, much, much higher prices. And where would the money go then? Well, to those who organize secondary market or black market activities and not to football.
3: हालांकि आलोचक जो हैं, वो इससे सहमत नहीं हैं. मैक्सिकन फुटबॉल लेखक रोड्रिगो मार्किस टिजानो का कहना है,
8: Infantino has gone crazy. Like, you know, like now the FIFA sees the fan, the aficionado, the hincha like a client, not as a part of the game anymore.
9: Will you be going to any of the games?
8: No, and I'm not nuts. I'm nowhere near to pay that crazy and stupid amount of money to go to a match. Like what's happening? Like to pay that, you buy their food, you buy their drinks, you buy their. I'm not making these guys richer than they are.
3: इन सभी बातों के साथ आपको बता दूं कि इस बार वर्ल्ड कप की स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि को-होस्टिंग देशों के बीच राजनीतिक तनाव भी चल रहा है. मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लॉडिया शीनबॉम को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचनाओं और व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ जुआन कार्लोस बैरन पास्टर का मानना है कि इन सभी बातों से स्थिति जो है वो और तनावपूर्ण हो जाती है.
10: I think that if US government could be more hostile, they would. And the World Cup is helping that they cannot be that openly or hostile as they would like to. I think.
9: So you think that the fact they're co-hosting the World Cup means they've had to tone down the language towards Mexico?
10: I think so.
3: Mexico इस टूर्नामेंट को अपने पड़ोसी देशों से अलग पहचान बनाने के अवसर के रूप में देख रहा है और सभी देशों के दर्शकों का स्वागत कर रहा है. हालांकि अमेरिका द्वारा कुछ ईरानी सपोर्ट स्टाफ को वीजा न देने की खबर भी सामने आई है. ऐसे में फीफा अध्यक्ष का कहना है कि संगठन की सीमाएं हैं.
7: We don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
3: इन तमाम विवादों के बावजूद मेक्सिको में फुटबॉल को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. मेक्सिको एक ऐसा देश है जो फुटबॉल को जीता है और एक बार फिर दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है कि वे सबसे बड़ा खेल उत्सव कैसे मनाता है. SBS न्यूज के लिए बेन ल्यूइस की इस खबर को सीधा मेक्सिको सिटी से SBS हिंदी के लिए आप तक लेकर आई भव्या पांडे.
2: और इस अंश के बाद कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, लेकिन चलते चलते मैं आपको ये जरूर बता दूं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में SBS एक्सक्लूसिव राइट्स रखता है आप तक फीफा के सारे कार्यक्रम लाने के लिए, और आप SBS ऑन डिमांड पर भी इसे देख सकते हैं. हम आपके लिए फीफा के अपडेट्स भी लेकर आते रहेंगे, लेकिन आपको मुझे ये बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप यानी फुटबॉल का ये जो पूरा क्रेज़ है ये आपके पास कितना है, आपको फुटबॉल कितना पसंद है और किस टीम का समर्थन कर रहे हैं आप इस साल. 04397997667 हमारा नंबर है. जब तक आप मुझे भेज रहे हैं संदेश, एक छोटा सा अंतराल ले रही हूँ. आप कहीं मत जाएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी पर. और अगर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो जो ये तो बिना कही हुई बात है कि आप मुझे बता ही सकते हैं कि वृषाली एक गीत ले आओ, तो बता दीजिए मुझे 04397997667 पर.
11: There's a reason some things just taste better. At Sharma's Kitchen, we don't cut corners. We don't add what doesn't belong. Just real milk, traditional methods, and products made the way they should be. From paneer to yogurt, ghee to khoya, every batch is crafted with care, right here in Australia. You'll taste it, you'll trust it. Sharma's Kitchen. Yes, there is a difference.
12: SBS Audio App आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है. SBS Audio App एकदम मुफ्त है. इसे App Store या Google Play से डाउनलोड करें.
13: जानिए SBS के टीवी और रेडियो चैनलों पर क्या चल रहा है और क्या आने वाला है. sbs.com.au/guide पर जाएं.
12: SBS Chill पर दुनिया भर के संगीत के साथ आराम करें. SBS Chill सुनने के लिए SBS Audio ऐप पर जाएं।
13: अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS Learn में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
14: SBS Audio
12: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
15: यही ज्यादा दिया। चुनबे हालम।
16: SBS Chill.
17: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
18: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
19: Far from the partisan politics.
12: 60 से अधिक भाषा में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
14: sbs.com.au/audio।
2: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। आप सुन रहे हैं वृषाली जैन को और आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग वैसे तो फीफा वर्ल्ड कप की। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, ये जो फीफा है यानी FIFA, इसका फुल फॉर्म जानते हैं आप? बता सकते हैं मुझे कि फीफा का वो जो फुल फॉर्म है वो क्या है? 04397997667 हमारा नंबर है और देखिए कितना जानते हैं आप फुटबॉल के बारे में। तो फीफा का फुल फॉर्म आज आप मुझे बता रहे हैं 04397997667 पर। अब आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर दिलीप कुमार गहनकारी के साथ। ये क्वींसलैंड में हैं, इनको इस साल ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल से नवाजा गया है और डॉक्टर गहनकारी उन कहानियों में से एक हैं जो भारत के उस तबके से आते हैं जिसने वाकई में सड़क की लाइट्स में बैठ करके पढ़ाई करी, डॉक्टरी की पढ़ाई करी और आज दुनिया भर के लिए एक मिसाल हैं क्योंकि उनके खुद के इस समय 6 पेटेंट पेंडिंग हैं। तो आइए सुनते हैं सड़क से या फिर ये कहें कि फर्श से अर्श तक का ये सफ़र डॉक्टर दिलीप गहनकारी। दोस्तों इस वर्ष के OAM सम्मानों में डॉक्टर दिलीप कुमार गहनकारी को OAM यानी मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया है प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में उनकी सेवाओं के लिए। ऑस्ट्रेलिया में एक बृहद मेडिकल करियर होने के साथ साथ उन्होंने प्री सर्जिकल केयर दी है भारत के मेलघाट इलाके में, वो भी ट्राइबल कम्युनिटीज को। आज इस पर चर्चा करेंगे उनके साथ और समझेंगे कि क्या रहा है उनके लिए एक कनेक्टिंग ब्रिज। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर गहनकारी और हमारी तरफ से OAM सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई।
20: धन्यवाद प्रिशारी।
2: तो डॉक्टर गहनकारी सबसे पहला रिएक्शन क्या था और सबसे पहले किसके बारे में सोचा आपने?
20: मैं तो चौकन्ना हो गया, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आई वॉज इन लाइक विश्वास ही नहीं हुआ। पहला जो विचार मेरे मन में आया कि ये पुरस्कार मेरा अकेले का नहीं है, ये पुरस्कार उन सभी लोगों का है जिन्होंने अपनी क्रिसमस की छुट्टियां छोड़कर मेरे साथ में एक छोटी सी गांव में, जो आप शायद नक्शे में भी दिखेगा नहीं, अपनी सेवाएं दी। ऑस्ट्रेलिया सरकार का तो काफी आभारी हूँ क्योंकि इस देश ने मुझे सर्जन के रूप में काम करने का मौका दिया।
2: थोड़ी चर्चा करते हैं मेलघाट की। आपने वहां पर 20 साल से अधिक समय दिया रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज ट्राइबल रीजन्स में देने के लिए, क्यों यही इलाका इतने लंबे समय तक?
20: ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं एक छोटे गांव में पला बड़ा हूँ, पलारशा नाम का। मेरे घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी तो मैं कभी कुछ साल तो मुझे बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ी। मेरे पिता का मानना था कि बच्चों की शिक्षा ही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। हम मेडिकल कॉलेज में गए नागपुर में, वहां पे 4 दोस्त लोग, रवि कोल्ले जो अभी उनको पद्मश्री मिल चुका है, अविनाश साव जी, प्रेम पंडित और मैं, सबकी एक ही इच्छा थी कि कोई रिमोट एरिया में, कोई दुर्गम एरिया में जाके प्रैक्टिस करे। उस टाइम पे एक छोटी सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई इनफॉर्मल और उसका नाम हमने दी प्रेयर रखा, दी फॉर दिलीप, प्रेम फॉर प्रेम पंडित, अ फॉर अविनाश और र फॉर रवि। सो ऐसे 4 लोगों के इनिशियल से हमने दी प्रेयर बनाया और उसकी अंग्रेजी मतलब प्रार्थना है, प्रेयर, वो तो 1984-85 की बात है। 84 में रवि ने पहले बैरागढ़ एक छोटे गांव में मेलघाट में जाके शुरू भी कर दिया काम। हमारा कोई कलेक्शन नहीं था किसी का भी मेलघाट से, और फिर मैं रवि के साथ में काम करना शुरू किया। मैंने कुछ ब्रेक लिया, वहां पे तो बिजली नहीं, रेडियो नहीं, फोन नहीं, रोड भी 4 महीने बारिश के टाइम पे पूरे बंद हो जाते थे। तो हमने काफी कठिन प्रकार के डिफिकल्ट डिलीवरीज, कुछ कुपोषण के परिणाम, ये सब का इलाज किया बिना किसी मदद के। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे और प्रशिक्षण लेना है और मैं फिर वापस आना चाहता हूँ। ऐसे होके मैं जनरल सर्जरी कंप्लीट की, फिर मुझे प्लास्टिक सर्जन बनने की इच्छा हुई तो मैं मुंबई में प्लास्टिक सर्जरी किया, फिर मलेशिया और यूके में काम किया, फिर ब्रिस्बेन में हैंड सर्जरी के ट्रेनिंग पे लिए आया और मेरी पत्नी और मैंने ब्रिस्बेन को अपना घर बनाया। लेकिन मेलघाट कभी भूला नहीं। तो जब मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई और मुझे थोड़ा सेटल लगा, तब हमने 2006 में पहला शेगांव में कैंप किया और रवि कोल्ले, वो और बाकी हमारे सभी दीप रेयर के 4 लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। लेकिन ये कैंप के लिए हमें मेलघाट से पेशेंट्स शेगांव में लाने पड़े। और फिर 2007 में हमारे दो जो दोस्त है, उन्होंने मेलघाट में ही धारणी के नजदीक अपना एक छोटा ट्राइबल हॉस्पिटल बनाया, जिसको महात्मा गांधी ट्राइबल हॉस्पिटल बोला जाता है। डॉक्टर आशीष और कविता सातव ने महान प्रोजेक्ट के दौरान ये हॉस्पिटल स्थापित किया, उन्होंने थिएटर बनाया। हमें बहुत खुशी हुई कि हम अपना काम मेलघाट में ही कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेलघाट की शुरुआत हुई। हमने लगातार वहां से 2007 से वही हॉस्पिटल में मेलघाट में ही काम कर रहे हैं। सिर्फ कोविड के 2 साल हमें जाने को नहीं मिला क्योंकि सब कुछ बंद था।
14: मेलघाट के आगे डॉक्टर गहनकारी, आपने ईस्ट टिमोर में बाली के बॉम्बिंग्स के समय पे, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के डिजास्टर रिलीफ के भी जो प्रयास रहे हैं उनका भी आप हिस्सा रहे हैं। ये सारी जो अलग अलग अनुभव रहे हैं, इन्होंने आपकी मेडिसिन की और सेवा की जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है, जो पूरी समझ है, उसको किस तरह से एक आकार दिया है, शेप दिया है?
20: किसी को मदद करना डॉक्टर की तो ड्यूटी होती है, लेकिन मुझे पहले से आदत रही है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की और ऐसी जगह काम करने की कि जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी जैसी स्पेशलिस्ट सेवाएं ज्यादा जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया में काम करने के साथ में ही अगर ये भी काम कर सकते हैं तो मुझे उसमें काफी दिलचस्पी रही है पहले से ही। ये सब बिना टीम वर्क से नहीं होता है और ये बिना खुद का अहंकार, बिना हिचकिचाहट से करना पड़ता है। इसके लिए पूरी टीम पे भरोसा करना पड़ता है और जो कुछ सक्सेस है वो पूरा टीम का रहता है। मुझे मेरे जूनियर्स को ट्रेन करने का भी मौका मिलता है, मैं हॉस्पिटल्स में पढ़ाता हूँ और कुछ और रिसर्च भी करता हूँ, तो यू नो ऑलराउंड एक्सपीरियंस ही इंटरेस्टिंग रहता है।
14: कई तरीके के पेशेंट्स के साथ डील किया है, चाहे बर्न्स विक्टिम्स हो, चाहे बच्चे हो, कैंसर पेशेंट्स हो, कोई एक ऐसा पेशेंट जो आपको हमेशा याद रह गया जिसमें आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत जैसा काम किया हो?
20: ऐसे तो बहुत केसेस है वृषाली जी, लेकिन एक 1.5 साल के बच्ची की कहानी हम आपको बताना चाहूंगा। मेलघाट की ट्राइबल एरिया की लड़की थी, वो 18 महीने की थी जब हमने पहले देखा उसको, और उसका पहला पूरा दाहिना हाथ और उंगलियां, शोल्डर से लेके उंगलियां तक पूरा जल गया था। एकदम माल नरिश थी, उसका हीमोग्लोबिन भी काफी कम था और सर्जरी भी थोड़ा रिस्की था, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर कुछ किया नहीं तो ये लड़की और निग्लेक्टेड रहेगी, उसकी देखभाल नहीं हो पाएगी और वो बढ़ेगी नहीं। मेरे कुछ एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट है इंडिया के दोस्त लोग, जिन्होंने हमें एनेस्थेसिया दिया उसको और हमने उसका पूरा हाथ उंगलियां करेक्ट किया रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के साथ में। 1 साल में वो ग्रोथ हुई कि हमें और दूसरे साल उसको एक बार फिर उसके कॉन्ट्रैक्चर जो रहते हैं जॉइंट्स के अक्रॉस रहते हैं वो फिर से बढ़ गए, तो फिर उन्होंने हमने उसकी और एक बार सर्जरी की। और जब हमने उसको 5 साल बाद में देखा, जब हमें वो लेके आए उसकी फैमिली, वो जैसे मुस्कुराती हुई आई और हमें अभी भी उसकी मुस्कान याद आती है। उसका वीडियो देखा जो नाचते हुए, वो काफी अनमोल फीलिंग है। अभी तो स्कूल जाती है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग सर्जरी रहती है। खासकर बच्चों में अगर ये सर्जरी हो पाई तो उनकी जो बढ़त है वो ठीक से होती है, उनकी मानसिक ग्रोथ ठीक से होती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये ऐसे एग्जाम्पल ही हमें प्रेरणा मिलती है कि और काम करें।
14: जी डॉक्टर गेंकारी, ये तो एक

0: clinicians here to their patients, which is very genuine. And Australia manages this extraordinarily well. The goodwill, the training, the framework, the culture of accountability. India ne mujhe resilience, adaptability, ability to deliver world-class outcomes with very little investment, ye sab sikhaya hai. Kyunki ye bahut important hai Indian context mein. Mera ideal hai ki dono ko combine karna chahiye. This is what we do in our camps. This is the basis of Australian and Indian collaboration at its heart. Ki hamara effort jo hai wo kafi organized rehta hai at the right time, at right place, and hope we change lives of some people with our effort.
1: जी, और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा डॉक्टर गैनकारी कि ओएम एक पूरे लाइफ टाइम का अचीवमेंट अवार्ड जैसा है. अब जब आप पलट के देखते हैं तो क्या ऐसी चीजें हैं जो करने से रह गई हैं, अब भी जो डॉक्टर दिलीप कुमार गहनकारी पूरा करना चाहते हैं जिन्हें?
0: लिस्ट तो काफी लंबी है वृषाली. मैं अभी भी फुल टाइम प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ. मैं गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पढ़ाता हूँ और काम करता हूँ, और मुझे कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स है वो मैं ऑस्ट्रेलिया में भी चालू है, और इंडिया में अमृता यूनिवर्सिटी उनके डिपार्टमेंट में मैं करता हूँ. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन इनोवेशंस. आई एम डेवलपिंग सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स इन प्लास्टिक सर्जरी. मुझे 6 पेटेंट्स पेंडिंग है. तो ये तो, और काफी रिसर्च में मेरा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चालू रहती है, और कभी हमारे ट्रेनीज के साथ में, कभी मेरा खुद का. आई होप आई विल बी एबल टू कंटिन्यू दिस एज लॉन्ग एज आई कैन. और मेलघाट इज द पिनाकल ऑफ माय, यू नो, इट्स द आइसिंग ऑन द केक इन माय लाइफ. हम लोग कुछ लोगों का लाइफ चेंज कर सकते हैं हमारी, ये तो मैं कोशिश करूंगा कि चालू रहेगा. और इसमें ऑब्वियसली डॉक्टर आशीष साथो, डॉक्टर कविता साथो, जो लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं उनका काफी योगदान है. उनके योगदान के बिना ये कैंप हो नहीं सकता है. मैं इच्छा करता हूँ कि वो लोग भी इस काम में शामिल रहे ऑन दी ऑनगोइंग बेसिस.
1: डॉक्टर गेंगारी, आपने आज इतना समय हमारे लिए निकाला और हमसे बात की, उसके लिए बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू ऋषाली, धन्यवाद.
2: तो दोस्तों, इसके साथ आपके लिए लेकर आ रही हूँ ये

समुदाय की जो कहानियाँ होती है ना, खासकर ये जो OM वाली कहानियाँ हम आपके लिए लेकर के आते हैं, यही कहने के लिए तो लाते हैं कि लक्ष्य हर हाल में पाया भी जा सकता है और मुमकिन है, लोग करके दिखा

0: रहे हैं, तो उम्मीद बनाए रखिए। और इसी के साथ ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार करेंगे चर्चा ऑस्ट्रेलिया में बैंक खाता खोलने पर। लेकिन आज आप मुझे बता रहे हैं फीफा FIFA फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है, तो इस FIFA का फुल फॉर्म क्या है? मेरे पास मेलबर्न से जगदीश चंद्रा जी का संदेश आ गया है और उन्होंने भेज दिया है सही जवाब। तो आप भी मुझे बताइए कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। 04397997667 हमारा नंबर है। छोटा सा एक अंतराल, फिर हाजिर होती हूँ, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा SBS हिंदी के साथ।
1: 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's a Desi dance party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
2: SBS World News, ब्रेकिंग न्यूज और उभरती हुई कहानियाँ जो आपके लिए मायने रखती हैं, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर से देखिए SBS वर्ल्ड न्यूज हर रात 6:30 बजे SBS और SBS ऑन डिमांड पर। आपके लिए लेकर आए हैं पुरस्कार विजेता नाटक, अंतर्राष्ट्रीय खेल और वृत्त चित्रों की दुनिया। SBS विविधताओं का एक संसार। देखिए SBS अपनी टीवी पर चैनल 30 और SBS वाइसलैंड चैनल 31 पर।
3: इनसाइट SBS का पुरस्कृत करंट अफेयर्स, ये उन विषयों पर चर्चा करने से नहीं डरता जिन पर अन्य लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हर मंगलवार 8:30 बजे SBS और ऑन डिमांड पर।
4: SBS South Asian plays hit.

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: SBS Audio App आपके फोन पर प्रोग्राम और पॉडकास्ट सुनने का सबसे अच्छा तरीका है. SBS Audio App एकदम मुफ्त है. इसे App Store या Google Play से डाउनलोड करें.
2: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
3: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली को और चर्चा जारी है फीफा वर्ल्ड कप की, जो आज से शुरू हो रहा है. ऐसे में मैंने आपसे पूछा, ये जो फीफा है यानी FIFA, इसका फुल फॉर्म क्या है? 04397997667 हमारा नंबर है और मेरे पास आपके सही जवाबों के संदेश लगातार आ रहे हैं. मेरे पास हेमलता पुरोहित जी ने भी संदेश भेजा है, जिन्होंने सही जवाब भेजा है और कहा है कि नमस्ते वृषाली जी एंड योर टीम, एंड शी सेज इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. SBS फ्लैशबैक में आज चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. आइए सुनते हैं इस अंश को. अगर आपके पास नौकरी है, सरकारी लाभ प्राप्त करते हैं या अपने बिलों का भुगतान आसानी से करना चाहते हैं, तो आपके पास एक बैंक खाता होना आवश्यक है. आपको एक से अधिक खाते की भी जरूरत हो सकती है. ऑस्ट्रेलिया में 20 मिलियन से अधिक ग्राहक बैंक खाते रखते हैं. इससे पहले कि आप भी उनमें शामिल हों, अपने लिए सबसे उपयुक्त खाता खोजने के लिए कुछ समय निकालें. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के आज के अंश में हम बात करेंगे कि आपके लिए सही बैंक का चुनाव कैसे करना है. ऑस्ट्रेलियाई लोगों के पास 100 से अधिक वित्तीय संस्थानों के साथ बैंकिंग करने का विकल्प मौजूद है. चूंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसलिए आपको विकल्प का चुनाव भी समझबूझकर करना चाहिए. सारा मैगिंसन फाइनेंस तुलनात्मक वेबसाइट फाइंडर में व्यक्तिगत वित्त विशेषज्ञ हैं. वे बताती हैं कि खाता खोलने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या निवासी तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए स्थायी निवासी होना आवश्यक नहीं है.
4: But you don't need to be a permanent resident. If you're on a temporary resident visa, then you're still eligible to open an account because banks recognize that you likely need an account to be able to exist here, you know, to transact and bank your income. But you can't open a bank account if you're not on a residency visa. So if you're just visiting and you don't have permission to be able to study or work in Australia, it can be much trickier to open a bank account.
3: आप किसी भी उम्र में खाता खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आपको एक अभिभावक या संरक्षक को सह हस्ताक्षरी के रूप में शामिल करना होगा. हम बैंक खातों की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम बैंकों, क्रेडिट यूनियनों और बिल्डिंग सोसाइटियों की भी चर्चा कर रहे हैं. क्रेडिट यूनियन और बिल्डिंग सोसाइटियों पर ग्राहकों का स्वामित्व होता है. एंड्रू डैड्सबल ऑस्ट्रेलियाई प्रतिभूति और निवेश आयोग यानी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन की मनी स्मार्ट वेबसाइट से जुड़े हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण रखने में मदद करती है.
5: There's lots of banks and credit unions and building societies in Australia. And despite there being many, there are four banks who dominate the market. And they're sometimes referred to as the Big Four. And they include the ANZ Bank, the Commonwealth Bank, National Australia Bank and Westpac.
3: इसके अलावा भी कई विकल्प उपलब्ध हैं. इसलिए अपने लिए उपयुक्त विकल्प को चुनने से पहले सभी उपलब्ध उत्पादों की तुलना जरूर करें. खाते दो मुख्य प्रकार के होते हैं और इन्हें अधिकांश वित्तीय संस्थान मुहैया कराते ही हैं. सुश्री मैगिंसन समझा रही हैं.
4: There's a regular transactional account, and the clue right there is in the name. That's an account where you'll do all your regular everyday transactions. It might be where you get your pay deposited. It's your everyday account that you spend with. So it's designed to have money flowing through it. The second type of account that you most likely will want is a savings account. And right now, interest rates are so high, you can earn a really good return on a savings account.
3: आपको लेन-देन खाते पर ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन इससे क्रेडिट या डेबिट कार्ड को जोड़ा जा सकता है। अपने लेन-देन खाते में कुछ बचत रखना और बाकी एक उच्च ब्याज दर वाले बचत खाते में रखना एक शानदार विचार हो सकता है। एंड्रयू डाइट्सविल समझाते हैं।
5: If you have a savings account, you'll earn interest on your initial savings and on the interest you've earned already. So you get interest on your interest. For example, if you have $100 in a savings account with a 4% interest rate, you'll have $104 at the end of the year. And that amount will compound year after year to grow your savings.
3: आपके द्वारा अर्जित किसी भी ब्याज को आपकी टैक्स योग्य कमाई का हिस्सा माना जाता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे अपने टैक्स रिटर्न में घोषित करें। तो सवाल अब ये है कि आपके लिए कौन सा बैंक उपयुक्त है? क्या आप एक ऐसा बैंक चाहते हैं जिसका भौतिक कार्यालय हो? तब पारंपरिक बिग फोर या कोई प्रसिद्ध बैंक आपके लिए सही रहेगा, जहां आप खुद जाकर बैंकिंग कर सके। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना सारा काम ऑनलाइन करना पसंद करते हैं। सुश्री मैगिंसन समझाती हैं।
4: In the last few years, we've had a number of what we call neobanks or digital banks open. So they don't have bricks and mortar premises for you to visit. They'll have different levels of customer service, but often a lot of these online banks have higher interest rates.
3: हो सकता है आपके लिए स्मार्टफोन की कार्यक्षमता महत्वपूर्ण हो। ये देखें कि कौन से बैंक आपको अपने क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट वॉलेट, गूगल पे या एप्पल पे में जोड़ने की अनुमति देते हैं, क्योंकि सभी बैंक ये सुविधा नहीं देते। आमतौर पर भौतिक कार्यालय वाले बैंक में आप अपने दस्तावेज लेकर जाते हैं और ऑनलाइन बैंक में आपसे डिजिटल सत्यापन के लिए कहा जाता है। पहचान का सत्यापन एक चुनौती हो सकता है। सुश्री मैगिंसन समझाती हैं।
4: It can be a little bit of an administrative process, but it's also a safeguard for you. So they'll want proof that you are who you say you are. That might be a passport, birth certificate, or a Medicare card. And usually you'll need to go into the bank to prove who you are as well. Some banks after COVID actually introduced digital verification of identity.
3: एक बार आप सिस्टम में शामिल हो जाते हैं और आपकी ऑनलाइन बैंकिंग या फोन बैंकिंग ऐप सेट हो जाती है, तो आप कुछ ही मिनटों में अतिरिक्त खाते भी खोल सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नवागंतुक हैं, तो आपके पहचान दस्तावेज थोड़े अलग होंगे। मैरी एंजेला स्टैग्निटी दशकों से प्रवासियों को बैंकिंग में मदद कर रही है।
6: If you're a new arrival, you've got your foreign passport, you've got your arrival date in the visa, so you do need a copy of your visa to make sure that you are here legally. You will have paperwork with you or an email confirming that you're on a working holiday visa. If you're on a student visa, then you qualify to have a student bank account.
3: यदि आप यहाँ केवल छुट्टी पर हैं, तो आप बैंक खाता नहीं खोल सकते। नए आगंतुकों को ऑस्ट्रेलियाई कर कार्यालय यानी ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस के साथ एक टैक्स फाइल नंबर के लिए पंजीकरण करना होगा और इसे 30 दिनों के भीतर बैंक को प्रदान करना होगा ताकि गैर निवासी विदहोल्डिंग टैक्स से बचा जा सके। सुश्री स्टैग्निटी कहती हैं कि कभी आपको अपने ऑस्ट्रेलियाई बैंक खाते में विदेश से पैसा स्थानांतरित करने की भी आवश्यकता हो सकती है, जो कि एक महंगा काम है।
6: An exchange rate for when you're transferring money, what we call telegraphic transfer from a foreign country into an Australian dollar account. That's a different rate. And then if you've got a card and you do a cash advance on the foreign card to get cash, that's a different exchange rate as well.
3: सारा मैगिंसन कहती हैं कि यदि आप लेन-देन खाते पर फीस का भुगतान कर रहे हैं, तो आपको एक बेहतर विकल्प तुरंत खोजना चाहिए।
4: There's no need to be paying those fees. You're pretty much donating profits to the bank. One thing to look out for in high interest savings accounts is that they will often allow you to offset the fees. So it might be a $10 a month fee, but as long as you meet certain conditions, you don't have to pay that fee. It might be you have to add a certain amount of savings or you can't make any withdrawals. So just make sure whatever bank account you choose, the conditions suit you.
3: कुछ बैंक आपको ऑस्ट्रेलिया आने से पहले खाता खोलने की अनुमति दे सकते हैं और आपके आगमन पर आपकी पहचान किसी शाखा में सत्यापित करने के लिए कहा जा सकता है। यदि एक ऑनलाइन बैंक है, तो वे आपको ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति दे सकते हैं और इसलिए अपने पसंदीदा वित्तीय संस्थान से संपर्क करें। ऑस्ट्रेलियाई सरकार की फाइनेंशियल क्लेम्स स्कीम हर खाता धारक के लिए $250,000 तक की गारंटी देती है। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी परिस्थिति में आपका वित्तीय संस्थान दिवालिया हो जाए, तो भी आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और ये भी अपने आप में खाता खोलने के लिए एक अच्छा कारण है। अपने नए जीवन में बसने के बारे में अधिक जानकारी और सुझावों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई प्रश्न है या कोई विषय सुझाव देना चाहते हैं तो हमें लिखें australiaexplained@sbs.com.au पर। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के संच को प्रस्तुत किया SBS न्यूज से मेलिसा कॉम्पनोनी और SBS हिंदी से वृषाली चैन ने। हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, मेरे पास योगेंद्र राणा जी का संदेश आया है जो कह रहे हैं, हाय वृषाली, आज हम अपने करीबी दोस्त राघव के फेयरवेल पार्टी में जा रहे हैं। कैन यू पुट एनी गुड सॉन्ग ऑन फ्रेंडशिप और इफ़ यू कैन प्ले झूम बराबर झूम शराबी प्लीज़ एंड ही सेज लव योर वर्क। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली ये गाना लाइब्रेरी में नहीं है। अगर कोई और गीत आप चाहते हैं मैं आपके लिए बजा दूं तो मुझे भेज दीजिए ज़रूर से, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए लेकर आने के लिए। और इसी के साथ एक छोटा सा अंतराल ले रही हूं, अंतराल के उस पर चलाएंगे गीतों की रेलगाड़ी। कोई गीत सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। और आज चर्चा चल रही है फीफा वर्ल्ड कप की और आप मुझे बता रहे हैं फीफा का फुल फॉर्म FIFA। जल्दी जल्दी भेजिए अपने संदेश, मैं बस एक छोटे से अंतराल के बाद और आखिरी अंतराल के बाद वापस आती हूँ। कहीं मत जाएगा, बने रहेगा SBS हिंदी पर।
7: NITV पर जाने उन मुद्दों के बारे में जो एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के लिए मायने रखते हैं। देखें NITV चैनल 34 और SBS ऑन डिमांड पर। SBS फूड के साथ पूरी दुनिया को अपनी रसोई में ले आइए। SBS फूड पर 7,000 से भी ज्यादा रेसिपी देखें, साथ ही हाउ टू लेख, वीडियो निर्देश और भी बहुत कुछ। sbs.com.au/food पर जाएं। SBS ऑन डिमांड पर सैकड़ों टीवी शो और फिल्में मुफ्त में उपलब्ध हैं। कहानियों की इस दुनिया को अपने फोन, स्मार्ट टीवी, टैबलेट या लैपटॉप पर देखें। आज ही SBS ऑन डिमांड ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। अच्छे शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रेरित करने के तरीकों की तलाश में रहते हैं। SBS लर्न में शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित ऑनलाइन संसाधन मौजूद हैं। sbs.com.au/learn पर जाएं।
8: SBS आपके तैयार होते ही तैयार है। एलेक्सा, गूगल होम या एप्पल स्मार्ट स्पीकर के साथ जुड़े रहना आसान है। सुनिए ताजा खबरें, विचार और कहानियां SBS हिंदी से जब चाहें। बस कहें प्ले SBS हिंदी पॉडकास्ट। SBS ऑडियो, संगीत, रेडियो और पॉडकास्ट आपकी लय से मेल खाते हुए।
9: SBS kickoff. A new music station celebrating football anthems from around the world.
10: It's time for Africa.
9: It's live now on DAB Radio, the SBS audio app.
10: We got the game
9: on. Online and SBS on demand.
11: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
3: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर। और अब चर्चा करते हैं SBS ऑन डिमांड की, और SBS ऑन डिमांड की इस चर्चा के बाद जहां पर आपको मिलती है हिंदी के बहुत ही गजब गजब ऑफरिंग्स। तो क्या है ये ऑफरिंग्स, हम इन पर एक चर्चा करते हैं और उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से गीत आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वो ले आऊँगी। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और आपका स्वागत कर रही हूँ SBS ऑन डिमांड की स्पेशल गाइड में, जिसमें हम बात कर रहे हैं विविध, मजेदार और दिल को छू लेने वाली उन कहानियों की जो इस समय SBS ऑन डिमांड पर आपके लिए हिंदी में स्ट्रीम हो रही हैं। चाहे आप किसी खास के साथ एक सुकून भरी शाम की योजना बना रहे हो या अपना मी टाइम एक अच्छी फिल्म के साथ बिताना चाह रहे हो, इस महीने की हिंदी भाषा की पेशकशें भावनाएं और चर्चा और दिल के कई रंगों को लेकर आती हैं। अगर एक बढ़िया बॉलीवुड ड्रामा देखने का मन रखते हैं तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला स्टारर रेड देख सकते हैं। एक ईमानदार सरकारी ऑफिसर खड़ा करता है कुछ मुश्किल सवाल एक बाहुबली नेता के सामने, वो भी 70 के दशक में। वो और उनकी पूरी टीम एक रेड करके कैसे पूरी व्यवस्था के सामने चुनौती की तरह खड़े हो जाते हैं, इसकी एक दिलचस्प पेशकश है।
12: रामेश्वर सिंह के नाम पे वारंट है।
13: गेट खोलो।
14: अंदर देख रहे हो?
12: बाहर देख रहे हो? इस देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं, उनसे लूटने वाले तुम जैसे बेईमान अमीर हैं। थरस अवेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद रेड्स डालनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेगा।
15: सोडेक बोतल है, ताजा ताजा खुला है, थोड़ा कसूर रहेगा।
12: 7 साल में 49 बार ट्रांसफर हुआ है, जब तक मेरा 50वीं बार ट्रांसफर नहीं हो जाता, ये शोर की आदत डाल लीजिए।
3: किसी थ्रिलर कथा को देखने का है जहां उत्कृष्ट अभिनय का प्रदर्शन किया गया है तो संतोष एक शानदार विकल्प है। इस फिल्म में शाहना गोस्वामी संतोष नाम की एक ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर हैं जिनको अपने पुलिस वाले पति की मृत्यु के बाद ये नौकरी मिली थी। कैसे उनका ये सफर तय होता है और क्या दिलचस्प केसेस उनके राह में आते हैं, ये एक बड़ी कहानी है।
16: तेरे जैसी औरतों के लिए सरकार की एक स्कीम है जिसे आश्रित कोटा कहते हैं, मतलब के पुलिस वाले की विधवा होने के नाते तुझे रमन की नौकरी मिलेगी। रमन के जैसे।
17: देविका पीपल, उम्र 14-15 साल, माता पिता राम पीपल रानी पीपल, लालीपुर गांव में मजदूरी करते हैं। शव कल गांव के कुएं में मिला था।
18: कैसे आया यहाँ पे?
19: लाटों ने फेंक दिया।
18: ऐसा क्यों करेंगे वो?
20: आप लोग भी हर चैनल पे छाए हुए हो, बधाई हो। हाँ बहुत बढ़िया, डटी रहिए दीवान जी।
21: आंखें बंद कर सांस ले, सांस छोड़।
22: इस देश में दो तरह के छुआछूत हैं, एक वो जिसे कोई छूना नहीं चाहता और दूसरा वो जिसे कोई छू नहीं सकता।
3: लेकिन थ्रिलर के बजाय अगर आप अपने लिए कुछ मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा जो आपको प्रेरणा दे सके, तो रुख कीजिए ऋतिक रोशन स्टारर सुपर 30 का। सच्ची कहानी पर आधारित बिहार के गणित प्रतिभा अनंत कुमार एक अनोखा IIT प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करते हैं जहां पैसों के आधार पर नहीं बल्कि छात्रों के हुनर के आधार पर उनकी किस्मत का फैसला होता है। और अगर माहौल को रखना चाहते हैं हल्का फुल्का, हंसने हंसाने और चटपटी कहानी से भरपूर, तो SBS ऑन डिमांड के हिंदी संग्रह में से अभय देओल और परेश रावल की एक हटके फिल्म ओए लकी लकी ओए देख सकते हैं।
23: मेरा नाम लकी है, लकी याद रखना।
24: दिल्ली की पॉश गलियों में सरेआम चोरियां बढ़ती जा रही हैं।
25: कुछ तो लेके ओए लकी, कुछ तो लेके आ, तुम गड्डी है तू करता है तेरे का किस बात का
26: कंसर्ट। एक दिन तेरा पता पूरी दुनिया पूछेगी।
27: जुगनी चढ़दी है शिकार, जुगनी रहंदी शीशे पार, जुगनी मोमोनी नारो दी कोठी सेक्टर 4।
28: बल्ले ओ बल्ले, शाबाश।
3: SBS ऑन डिमांड आपके लिए एक खास डॉक्यूमेंट्री भी लाता है अगर मन है कि धर्म में गहरा उतरें या भारत के इतिहास को, वहां की मान्यताओं को बेहतर समझें, तो रुक कीजिए डॉक्यूमेंट्री महाकालेश्वर का, जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथाओं, परंपराओं और अनुष्ठानों तथा भगवान शिव के महाकाल स्वरूप से उसके संबंध पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई नए कार्यक्रम, सुन सकते हैं हिंदी समाचार, SBS हिंदी समेत कई और भारतीय भाषाओं में खबरें, वर्ल्ड वॉच और ऑस्ट्रेलिया और देश दुनिया की ताजा खबरें जो आती हैं उन देशों से ही। साथ ही आप SBS साउथ एशियन और SBS हिंदी को भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं और ये सब कुछ SBS ऑन डिमांड पर आपको मिलता है बिल्कुल मुफ्त। यदि आप हल्के फुल्के दिल को छू लेने वाले मनोरंजन की तलाश में हैं तो SBS ऑन डिमांड के व्यापक हिंदी फिल्म संग्रह को और सीरीज संग्रह को भी जरूर देखें। और आपकी ये मनपसंद कहानियां आप पा सकते हैं कहीं भी कभी भी बिल्कुल मुफ्त। अधिक जानकारी के लिए जाइए sbs.com.au/sbsondemand पर, जहां पर आप हिंदी कलेक्शन ढूंढ सकते हैं।
29: ता कयामत
0: जो चिरागों की तरह जलते।
3: ये गीत योगेंद्र राणा जी के लिए।

और आपकी हंसी ना हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना ही होती है। इसी के साथ जफर साहब का संदेश आया है जो कह रहे हैं, गुड प्रोग्राम रिशारी जी। फीफा स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन व्हिच इज द राइट आंसर, बट ये फ्रेंच में है तो सही जवाब एक्चुअली है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। और पुष्पा चंद्रा जी मेलबर्न से मुझसे कह रही है इतने आसान सवाल ना पूछा करो। जी ठीक है, मैं अगली बार से थोड़े मुश्किल सवाल ले आऊंगी। इसी के साथ इस गीत के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ, फिर मुलाकात करने आऊंगी। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा, फीफा का लुत्फ उठाइएगा SBS पर, और हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे ताज़ा अपडेट्स। वो तो बिना कही हुई बात है। खैर अपना ख्याल रखिएगा, उसमें कोई कोताही मत बरतिएगा। नमस्कार।

शब्दों पे नहीं दृश्यों पे ध्यान दो, क्योंकि शब्दों में झूठ छुपने की जगह ढूंढ ही लेता है, लेकिन दृश्य दृश्य कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपकी आंखों के सामने क्या है, सवाल ये है कि आप देख क्या रहे हो।

0: झूठी सी कसम।
1: दृश्यम दृश्यम
0: राज रह के भी रह नहीं पाता है ये सच का धर्म।
1: दृश्यम।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

0: ठोकरे खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।
1: SBS South Asian

0: जब प्यार था तब बात और थी, अब तो आप व्यापार कर रहे हैं, तभी तो जाते वक्त नुकसान नफा बोल दिया था। आप कभी अपनी कमियां ही नहीं बोले, वरना खुदा के सामने कबूल है तो तीन दफा बोल दिया था, तीन दफा बोल दिया था। जैसे हमें कोई नहीं मिला, आपको भी सभी नहीं मिलेंगे। खुदा हाफिज औजला जी, आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे।
1: SBS South Asian।